0: Radio Aman Network, News and Information Station.
1: Radio Aman Network.
2: Pegham Aman hai.
3: Pyar ki ek duniya lekar.
4: Mohabbat samet kar.
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: तुझे जिक्र।
1: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
2: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।

0: शुक्रिया। आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: अलहमद इस्लामिक इंटरनेशनल पब्लिक हाई स्कूल बटाग्राम लतीर उलोशमार कलूना तालीम पर मैदान की खुल खिदमत तबसर कवि नकाम बची खुल बची गणी दौर हाजिर तालीम वरकवल सरा सरा माशुमारों के इखलाकी किरदार साजे बांधे हम खुसूसी तवज्जो साथी कमचे तालीम पर मैदान के और बटाग्राम के दतीर उद्रव कालूना टॉप पोजिशन होल्डर इदारा दा अलहमद इस्लामिक इंटरनेशनल पब्लिक हाई स्कूल बटाग्राम जमुन खुसूसियात दौर जदीद तालीम वरकवल माशुमानों के इस्लामी अकदार रावस्तल जो सफा सुथरा और तालीमी माहौल वरकून के इदारा द स्कूल फुल ट्रांसपोर्ट और द सिक्योरिटी बेहतरीन इंतजाम कंप्यूटर लैब और द लोबो खपल मैदान खुमश्ता नुदखपल औलाद मुस्तकबिल रोखा नकड़े मुंगसरा द प्ले ग्रुप नवाला तर नाइन्थ क्लास पूरी द तुलबो तालिबात पर महदूद सीटों बांधे दाखिले शुरू दी नुपता याद साथ अलहम इस्लामिक इंटरनेशनल पब्लिक हाई स्कूल निस्त वावडा ऑफिस गेरवली बाजार बटाग्राम मजीद द मालूमात द पारा द टेलीफोन शमेरा दा 0997-310-444 मोबाइल नंबर दे 0345-94-72-137।

0: हाँ जी बिल्कुल, दो मैसेज पलारी बांधी मुक्ता तक मैसेज लेके लिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सेब,
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: तसलाम या आरिफ आरिफ शाह यम द बाला बांडा ना। हाँ जी आरिफ शाह, डेर मनना तासु शुक्रिया चे तासु राले प्रोग्राम की मुसरा खपल अमीन शरीक कर लबल में से रगले। अस्सलाम वालेकुम हयात भाई सिंह या डॉक्टर सेब सिंह दे जमा सलाम कबूल कहे मेवश फ्रॉम पागोड़ा। हाँ जी डेर मनना जी शुक्रिया तासु सिस्टर आज तासो मुंगताप प्रोग्राम की खपल लगा मीना शरीक का है मुंगता मैसेज का है और इधर को तासो हम रात लेशे मुंगता कॉल का वलेशे पर 0311-84-33-878 बांदी 0311-84-33-878 बांदी। डॉक्टर अकबर कुरेशी से मुंगसरा पर दगा प्रोग्राम की मौजूद दी मुंगसरा नास्ते कभी कचरत के तासो दीना पुख्तनी लड़ाई सवालों ने लड़ाई दखपल मरीजानों हवाले सर तासो हम रात लेशे दगा प्रोग्राम की मुंगता कॉल का वलेशे।

0: अच्छा जी मक्के
1: शोधो बाबा खबर छे खुले जगह वंडी ना कैसे ना दिलेंडी
0: अच्छा जी
1: शेरदादा खानदार पछा जोर की खबर है राड़ो डे पजोर के लंडी उदो अपल कोर के
0: अच्छा जी मके
1: रहमान वगी डेर पगोर के
0: अच्छा जी मके
1: लंडी ठेकेदार इसे पतंगी
0: जबरदस्त ढेर बेहतरीन यार ढेर बेहतरीन बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त ढेर बेहतरीन जी अब मोहम्मद गेम तरफ से बता छू कमे के डिग्री सेलेक्ट जो खाए मैं सुखाए संडे मंडे की पीर मंगल बुध जुमरात दे की कमी ओके
1: पीर मंगल
0: बुध के जान रेडी के ठीक था सिंह छत्री लामा खत्म कर सही था बस सही
1: था
0: बस दस नहीं पूछी मुझे दस नहीं पूरी की ना मतलब कन्फ्यूज माले कन्फ्यूज की चले जी वन टू बिल्कुल जी नाम सेलेक्ट रखा थे दिव राउंड के 50 पॉइंट से मिला अबू मोहम्मद डीरे से मन को खुशहाल रहता हूँ उसे हाँ ओके भाई अल्लाह हाफिज वाजी वाह तीन शेर लफाफ गुरु सर बरान मन सुख दे तो कम से अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम
2: जी
0: वालेकुम सलाम जी सुख
2: नेम ज्यादा खबर गुम
0: जी नेम ज्यादा तो गेम को खियो से सागस से देखना बोलनो
2: अच्छा सर से जी जी संग मा उ खत्म कर कट के जी
0: नगर दा सु गेम ने पोशी भी नहीं है कहना हां
2: जी
0: बस दोबारा भी चांस निश्चित खड़े रहा मन को सस्त काल का बोलो बिल्कुल जीता हूँ सर नहीं चिंता बुरा क्या करो डेजा मन कहो पहले मैं ऐसे जाता सलाम वालेकुम सिंह था आज भाई समार से सलाम आई एम नायाब नायाब डेरे से तमन ना वेलकम टू द शो सलाम था आज भाई आओ गेम शो तब खैर राले सिंह हाल दी जी का खजी बर्थडे दे बर्थडे दे मुबारक शाह जेड के वाला गाना पीजीएम की प्ले के कहना सब वालेकुम दादा जी पहले मैं ऐसे जाते भाई भाई गेम समाज समझ के रख ले तू समझ के बोले नाराजी जखूप सही पो बिल्कुल तो डेरा काफिल है करना है मैं जनाब कॉल तो तुझे करूँ सर कॉल का उनके सुख दे तो कम से नहीं अस्सलाम वालेकुम जी
3: वालेकुम सलाम
0: जनाब ये सुख दे कम से ना हमीद ठेकेदार
3: जी दस
0: खैर खैरत तेता सुखैर
3: खैर
0: खैरत जी अरे तो वो गेम आसान थी कि ग्रांड यार दस समझता
3: गेम खबर लंडी
0: सत्ते बस दे मुझे खैर दे रुक दो था बस ब्याह बता अच्छा था बल प्रोग्राम की डिस्कशन पति बनी को गेम किस्सा खाले कहना खाली दारा तो वो है गेम मुझे पोषी भी है ना दोबारा दे पढ़े भी जरूरत नहीं था सही ना
3: बिल्कुल
0: सही था नुकम के डिग्री से लिखू जरूरत हो मैं कहता रहता हुआ है इनसो वाला नो एक द पचास और साठ मस के सही था
3: दस पूरे
0: हाँ मतलब दस से करना पचास और साठ मस के दस इनसे रख ले लेकिन सही था नो दस पचास इक्यावन बावन दस ही देखा फिफ्टी फिफ्टी वन फिफ्टी टू कम होता आसान दे
3: दस पूरी
0: दस पूरी जम वाला दागा सही था दस पूरी ठीक था
3: बिल्कुल
0: चले जी को डायरेक्ट उधरी के वो बकी ना सही था डायरेक्ट नंबर हुआ है उधर दिल वो बकीनी चले जी थ्री टू वन नाइन अरे का फर्स्ट फर्स्ट राउंड के नाइन से कट रहे जबरदस्त जबरदस्त सौ पॉइंट मेरा विषय भी धीरे से मन लगे ठेकेदारा खुशहाल रहता हूँ भाई अल्लाह हाफिज जी
4: सूरत जल
0: हाँ हाँ जी बिल्कुल दर्द से करूँ सर बिल्कुल हल्का उनके सुख दिए वो दखम से ना दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम समझ के।

0: एनीवे जनाब कॉल तरफ से गुरु सर कॉल को उनके शौक दे और द कम ज़ैन दी जी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: जी महक तौसी है
1: या
0: जी कम तपुस तो कम गलत जवाब रखो वैसे ही सही जवाब बना रखो हां
1: सही
0: है हदर तो वो 50 और 10 सुशी
1: 10
0: हां 10 10 खसे 10 और 15 और 8 सुशी
1: नो
0: नो और नंद सरजवा
1: इतवार
0: और द इतवार ने बात की कमर राजी
1: हफ्ता
0: हफ्ता खजी दर तो हुए मतलब जनवरी फरवरी मार्च पे कम म्याच तो बिया
1: जनवरी
0: जनवरी और दगे ना द आखिर ने म्याच के में होता
1: मार्च
0: मार्च और पहले म्याच के में होता पहले म्याच के में दौड़ बने म्याच
1: फरवरी
0: पॉइंट ने बिल्कुल बराबर रख ली थी मेहक नुम दिसा सुगा ना ससो दे बल लगा रोज के मोहम्मद ससो पॉइंट्स बराबर रख लेता सो कॉल्स ड्रॉप के सही ना और जब यो पोस्ट ना कुमा तो चार जवाब चार कॉल जुड़े के तो जवाब सही हुआ तो ना वो फाइनल तक क्वालिफाई के ठीक था चार जवाब कॉल चमक के लगे थे ठीक था ओके भाई अल्लाह हाफिज हाय दावे की स्थिति मना हे अल्लाह खजी पुख्ता नजकुमा आओ बे बता सदी जवाब रखा हुआ है चल जवाब राजी आगस बकॉल्स गई जवाब सही हो तो ना बे क्वालीफाई के फाइनल तो सही था

0: Anyway, Jinab, 3, 2, 1, go! And so, assalamu alaikum, ji.
1: Alaikum
0: salam. Oh, make! Final to qualify, good is that? Final to qualify, good is that?
1: Ji.
0: Kana?
1: Yeah.
0: हाँ फाइनल के वापस आगे दगे तरफ तराजू ठीक है ना हम खे चिकम जमुंगा जोर तरतीबो हम तुम गेम चिकम दे लगा आगे किस सिंगा चलू मजो की डिग्री पर आकर उदास मतलब जज के वैसे ही ना उधर जवाब बरा के वैखा उधर के ऊपर की ना सही ना डायरेक्ट डायरेक्ट जवाब बरा के वै के डिग्री शुआ दगा दिमाग तुम सही ना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सही ना कौश लगे मंदी सही था चले जी 3, 2, 1 दिसंबर
1: जनवरी
0: जनवरी लेट रहा लेकर ना लेट बना जॉब सही था बल चांस थे दिम चांस थे सही था चले जी 3, 2, 1 मार्च जर जर जवाब दे अप्रैल ब्याह गलत रहा गलत आखिरी चांस थे 3, 2, 1 अगस्त लग लेट रहा गले दे और जखेर फिलहाल सस पॉइंट कम से सस आवाज लग लेट मात रहा गले दे 0 पॉइंट थी क दागबल कम रोड चिदी शर्ज़ा तक अगर नो मकालत शुल नो मकालो भी अबरावरी की सस सईद ओके भाई लाफिस जी जी सईद सईद है सॉरी शर्ज़ा तो शर्मिंदा तो शुमला दा गाने के सभी सबर दा वाले ब्रेकिंग

मुबारक हो जी, तीन जबर मानो छा गए हो आप। मैं से जो सर शामिल हो जी अवताज में ना मास प्रोग्राम टोल भावर दो और देर खुशहाल हो जे मामी नस्मानी देर मन ने को द मास जो प्रोग्राम में भावर दो बल मैं से जागले जी भाई आखिर की पे आगा जेड के वाला संग प्ले के करना तो कुछ को प्ले को दे तो सही ना अभी बर्थडे सॉन्ग प्ले सॉन्ग को प्ले कई करना नन पता है शर्मिंदगी क्या है सालन की प्लेट में आलू तोड़ो और वो मेहमान की गोद में जा गिरे। अच्छा जी बल मैं ऐसे जागर नहीं ताज से ज्यादा वो शो ना ज्यादा नहीं शिव अहमद अहमद खान आई एम अहमद खान ताज से वो ताज तुम्हारा कल ना अटेंड करो ताज ज्यादा उगना मार ज्यादा नहीं देखा रे अब कल कल अच्छा तो उल्ली चकाल में क्यों लेकिन बस आ गई हम जी ताज भाई बिल्कुल जी मोस्ट वेलकम वर्तम ओ हाँ हा दमे खुशम ताज भाई सरा अस्ता सुना हदरो खबर ची सुख इस तम तीज भी अगे और खंदा और